0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में वह असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ रहता है। श्रोताओं, ये था उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 16वां पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इस पद की व्याख्या कर नवा अध्याय शुरू किया था, जो एक प्रकार से इसी भाव को जारी रखता है। 8वें अध्याय का अंतिम पद हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन के लिए बाध्य करता है। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हो, ईश्वर की योजना को समझने में हम असमर्थ ही रहते हैं। हम जीवन के अर्थ को ढूंढते रह जाते हैं, किंतु हमारी तलाश कभी तृप्त नहीं होती। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, उसी में संतोष करें। वह याद दिलाता है कि समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी दावा करते हैं कि उन्होंने सब कुछ का ज्ञान हासिल कर लिया है, किंतु ईश्वर के रहस्य को समझने में वे असमर्थ ही रहते हैं। श्रोताओं, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की थाह तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को पहचाने, ईश्वर की महिमा को पहचाने जो कि अपरंपार है। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन में भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता और तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है।

आगे नवे अध्याय के प्रथम पदों में उपदेशक कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी और ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर। धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सब की गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी मनुष्य के जैसी ही है। शपथ खाने वाले व्यक्ति की गति उस व्यक्ति के जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। श्रोताओ, यहां एक बार फिर उपदेशक यह समझने की कोशिश करता है कि सबकी गति एक सी क्यों होती है। वह हम सब से आग्रह करता है कि हम जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने। कहता है कि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है, इसलिए प्रज्ञा की कभी उपेक्षा नहीं की जाए। श्रोताओ, सभी चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं। मनुष्य चाहे धर्मी हो या विधर्मी, अंततः सबकी गति एक जैसी होती है। अंततः सभी को मृत्यु के पाश में जाना होता है। इन शब्दों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो उपदेशक सुलेमान अनंत के भाव को भूल चुका था, या फिर अनंत जीवन में उसका विश्वास डगमगा गया था और सब कुछ को उसने अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने सदा सर्वदा रहने वाले जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया था, जवाबदेही को भुला दिया था। वह जो कुछ अपने सामने देखता था उसमें उसने सृष्टिकर्ता ईश्वर के असीम प्रेम को कभी देखने की कोशिश नहीं की। उपदेशक ने एक बार फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अपने विचारों को नियति, किस्मत अथवा भाग्य में बदलने दिया। उसे इस बात का ज्ञान था कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर अंतर्यामी हैं, उनका राज सर्वत्र आच्छादित है। जीवन और मरण सब ईश्वर के हाथ में है। जैसी ईश्वर की इच्छा होती है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। फिर भी सभी मनुष्यों की गति एक जैसी क्यों होती है, चाहे वे भले हों या बुरे? श्रोताओ, कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है भी या नहीं, और यदि हैं तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनते। इन प्रश्नों का जवाब हमें ईश्वर के कार्यों में मिल जाता है। ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, ईश्वर की शाश्वत शक्तिमता को विश्वास की आंखों से देखा जाना जरूरी है। आगे नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों में उपदेशक मनुष्यों की मूर्खता पर एक बार फिर विचार करता है और कहता है, पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है कि सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन भरा रहता है, और उसके बाद वे मृतकों के पास चले जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं वे जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट जाएगा। पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के ये शब्द हमें कठोर और कटु लग सकते हैं, किंतु चिंतन योग्य हैं। यहाँ राजा सुलेमान इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि इस धरती पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सारा अस्तित्व, उसकी चेतना जीवन के साथ खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका कुछ नहीं रह जाता। केवल उसके द्वारा बोले गए प्यार के दो शब्द, उसके द्वारा संपादित काम रह जाते हैं। श्रोताओ, उपदेशक ने एक बार फिर हम मनुष्यों को चेतावनी देनी चाहिए है, और वह यह कि जब तक जीवन है तब तक हम भले कार्यों में लगें, जरूरतमंद की मदद करें और दुष्टता एवं बुराई से दूर रहें। केवल इस जीवन के बारे में नहीं, अपितु
इस जीवन के परे सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जो हमें अन्यों की सहायता से, दूसरों के प्रति प्रेम से और सद्भावना से मिल सकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने डिब्रूगढ़ के धर्माध्यक्ष माननीय अल्बर्ट हेमरम को गुवाहाटी महाधर्म प्रांत का सहायक महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा 16 जुलाई को हुई। नवनियुक्त सहायक महाधर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेमरम का जन्म 27 फरवरी 1969 को असम के तिनसुकिया जिला स्थित कोनापत्थर गांव में हुआ था। उन्होंने डिब्रूगढ़ के संत जोसेफ माइनर सेमिनरी से शुरुआती प्रशिक्षण ली और शिलोंग के ओरियंस थियोलॉजिकल कॉलेज में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र की पढ़ाई की। उनका पुरोहिताभिषेक 25 अप्रैल 1999 को डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत में हुआ था। 2 दिसंबर 2018 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें डिब्रूगढ़ का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। 24 फरवरी 2019 को उनका पावन धर्माध्यक्ष अभिषेक हुआ और 15 फरवरी 2021 को वे डिब्रूगढ़ के धर्माध्यक्ष बने। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन में अपने मिशन के तीसरे दिन इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ मारिया जुप्पी कीव में यूक्रेनी राज्य दिवस समारोह में भाग लिए, जो कीवन रस के बपतिस्मा की याद में मनाया जाता है। आकाश की ओर देखते हुए जहां से रात में मिसाइलों ने फिर से नागरिकों की इमारतों पर हमला किया, कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने कीव से यूक्रेनी भाषा में यूक्रेन के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद एवं सुरक्षा की याचना की। एक न्यायपूर्ण शांति प्रदान कर, कैदी घर लौटें, बच्चे एक बार फिर अपने परिवारों को गले लगाएं, लापता लोग मिल जाएं और हर कोई अपने मृत प्रियजनों के शव पर शोक मना सके। हम प्रत्येक में शांति निर्माता बनने का साहस एवं प्रज्ञा जगाइए। 15 जुलाई इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ मारिया जुप्पी के यूक्रेन मिशन का तीसरा दिन था। वे 13 जुलाई की शाम को यूक्रेन पहुंचे और लाविव इलाके से यात्रा करके वे 14 जुलाई को किए पहुंचे। उनकी यात्रा का मुख्य मकसद पोप लियो चौदहवें का सामीप्य प्रकट करना है और 2023 में उनके पहले मिशन के दौरान बनाए गए संपर्क एवं संचार के तरीकों को मजबूत करना है, जो पोप फ्रांसिस ने उन्हें परम धम्मपीठ की मानवीय कोशिशों के समर्थन में सौंपा था। ये कोशिशें युद्धबंदियों की अदला बदली को आसान बनाना, उन बच्चों की वापसी पक्की करना जिनके बारे में यूक्रेन का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती रूस ले जाया गया है, और लड़ाई में मारे गए लोगों की लाशें वापस लाने पर ध्यान देना है। दोपहर में कार्डिनल जुप्पी इन इलाकों में काम करने वाले संघ और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल प्रतिनिधियों से भी मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ उनकी कोई आधिकारिक मुलाकात तय नहीं है। दोनों की मुलाकात 3 साल पहले कार्डिनल के मिशन के दौरान हुई थी। प्रेरितिक राजदूत आवास में क्रिस त्याग के बाद, जिसे महाधर्माध्यक्ष विश्वलदास कुलबोकास ने अर्पित किया, कार्डिनल जुप्पी ने कीवान रस के बपतिस्मा उत्सव में हिस्सा लिया। हर साल 15 जुलाई को मनाया जाने वाला यह वर्षगांठ 988 में राजकुमार वोलोदिमिर

मेर द ग्रेट द्वारा देश को ईसाई बनाने की याद में मनाया जाता है। उन्हें कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों ही कलीसियाओं द्वारा संत माना जाता है और जिनकी विरासत पूर्वी यूरोप की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ी है। इस दिन को नागरिक और धार्मिक दोनों तरह से मनाया जाता है। इससे आधिकारिक रूप से यूक्रेनी राज्य दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2021 में एक आज्ञाप्ति पर हस्ताक्षर करके इसे राष्ट्रीय कैलेंडर में जोड़ा था। कीव में इस समारोह में शामिल होने वालों में अलग अलग धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधि, यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के मेजर बिशप स्वेतोस्लाव शेवचुक और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन शामिल थीं, जो युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की अपनी 11वीं यात्रा पर थीं। कार्डिनल जुप्पी ने सुनहरे गुंबददार मठ के सामने संत माइकल प्रांगण में हुए समारोह में हिस्सा लिया। इटालियन दैनिक समाचार अवेनीरे के अनुसार यह रूस के बड़े पैमाने पर हमले के शुरुआती दिनों से ही युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बना हुआ है। स्मारक दीवार के पास मार्ग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की और दूसरे लोगों के साथ जुलूस में चलते हुए जहां युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, कार्डिनल लाल गुलाब का एक गुलदस्ता लिए हुए थे जिसे उन्होंने बाद में युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवाने वालों की याद में रखा। यूक्रेनी भाषा में लिखे एक दस्तावेज को पढ़ते हुए बोलोनिया के महाधर्मदर्श ने देश के लिए न्यायपूर्ण शांति की प्रार्थना की, जिसे पोप फ्रांसिस ने बार बार शहीद बताया था। उन्होंने इसे ईश्वर एवं संत वोलोदिमिर की मध्यस्थता को समर्पित किया। यह देखते हुए कि संत का नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों के नाम पर है, उन्होंने प्रार्थना की, संत वोलोदिमिर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मन एवं दिल को रोशन करें और न्याय एवं शांति के रास्ते खोलें। नोबेल पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक, धार्मिक नेता और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु हथियार के युग में निरस्त्र एवं बिना हथियार वाली शांति के लिए रोम घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए रोम के कंपिदोलियो में एकत्रित हुए। परमाणु हथियार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न हुई बड़ी चुनौतियों के सामने यह संयुक्त अपील नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है। गुरुवार 16 जुलाई को रोम के कंपिदोलियो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु और स्वायत्त हथियार, नए डिजिटल नवाचार और डिजिटल विकास के उभरते मॉडल के युग में निरस्त्र एवं बिना हथियार वाली शांति के लिए रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और इसी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं परमाणु युद्ध पर विश्व नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सभा समाप्त हुई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव की सुरक्षा के लिए समर्पित है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में वह असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ रहता है। श्रोताओं, ये था उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 16वां पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इस पद की व्याख्या कर नवा अध्याय शुरू किया था, जो एक प्रकार से इसी भाव को जारी रखता है। 8वें अध्याय का अंतिम पद हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन के लिए बाध्य करता है। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हो, ईश्वर की योजना को समझने में हम असमर्थ ही रहते हैं। हम जीवन के अर्थ को ढूंढते रह जाते हैं, किंतु हमारी तलाश कभी तृप्त नहीं होती। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, उसी में संतोष करें। वह याद दिलाता है कि समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी दावा करते हैं कि उन्होंने सब कुछ का ज्ञान हासिल कर लिया है, किंतु ईश्वर के रहस्य को समझने में वे असमर्थ ही रहते हैं। श्रोताओ, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की थाह तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को पहचानें, ईश्वर की महिमा को पहचानें जो कि अपरंपार है। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन में भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता और तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है।

आगे नवे अध्याय के प्रथम पदों में उपदेशक कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी और ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर। धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सब की गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी मनुष्य के जैसी ही है। शपथ खाने वाले व्यक्ति की गति उस व्यक्ति के जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। श्रोताओ, यहां एक बार फिर उपदेशक यह समझने की कोशिश करता है कि सबकी गति एक सी क्यों होती है। वह हम सब से आग्रह करता है कि हम जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान मानें। कहता है कि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है, इसलिए प्रज्ञा की कभी उपेक्षा नहीं की जाए। श्रोताओ, सभी चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं। मनुष्य चाहे धर्मी हो या विधर्मी, अंततः सबकी गति एक जैसी होती है। अंततः सभी को मृत्यु के पाश में जाना होता है। इन शब्दों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो उपदेशक सुलेमान अनंत के भाव को भूल चुका था, या फिर अनंत जीवन में उसका विश्वास डगमगा गया था और सब कुछ को उसने अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने सदा सर्वदा रहने वाले जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया था, जवाबदेही को भुला दिया था। वह जो कुछ अपने सामने देखता था उसमें उसने सृष्टिकर्ता ईश्वर के असीम प्रेम को कभी देखने की कोशिश नहीं की। उपदेशक ने एक बार फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अपने विचारों को नियति, किस्मत अथवा भाग्य में बदलने दिया। उसे इस बात का ज्ञान था कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर अंतर्यामी हैं, उनका राज सर्वत्र आच्छादित है। जीवन और मरण सब ईश्वर के हाथ में है। जैसी ईश्वर की इच्छा होती है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। फिर भी सभी मनुष्यों की गति एक जैसी क्यों होती है, चाहे वे भले हों या बुरे? श्रोताओ, कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है भी या नहीं, और यदि हैं तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनते। इन प्रश्नों का जवाब हमें ईश्वर के कार्यों में मिल जाता है। ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, ईश्वर की शाश्वत शक्तिमता को विश्वास की आंखों से देखा जाना जरूरी है। आगे नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों में उपदेशक मनुष्यों की मूर्खता पर एक बार फिर विचार करता है और कहता है, पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है कि सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन भरा रहता है, और उसके बाद वे मृतकों के पास चले जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं वे जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट जाएगा। पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के ये शब्द हमें कठोर और कटु लग सकते हैं, किंतु चिंतन योग्य हैं। यहाँ राजा सुलेमान इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि इस धरती पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सारा अस्तित्व, उसकी चेतना जीवन के साथ खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका कुछ नहीं रह जाता। केवल उसके द्वारा बोले गए प्यार के दो शब्द, उसके द्वारा संपादित काम रह जाते हैं। श्रोताओं, उपदेशक ने एक बार फिर हम मनुष्यों को चेतावनी देनी चाहिए है, और वह यह कि जब तक जीवन है तब तक हम भले कार्यों में लगें, जरूरतमंद की मदद करें और दुष्टता एवं बुराई से दूर रहें। केवल इस जीवन के बारे में नहीं, अपितु
इस जीवन के परे सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जो हमें अन्यों की सहायता से, दूसरों के प्रति प्रेम से और सद्भावना से मिल सकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने डिब्रूगढ़ के धर्माध्यक्ष माननीय अल्बर्ट हेमरम को गुवाहाटी महाधर्म प्रांत का सहायक महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा 16 जुलाई को हुई। नवनियुक्त सहायक महाधर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेमरम का जन्म 27 फरवरी 1969 को असम के तिनसुकिया जिला स्थित कोनापत्थर गांव में हुआ था। उन्होंने डिब्रूगढ़ के संत जोसेफ माइनर सेमिनरी से शुरुआती प्रशिक्षण ली और शिलोंग के ओरियंस थियोलॉजिकल कॉलेज में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र की पढ़ाई की। उनका पुरोहिताभिषेक 25 अप्रैल 1999 को डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत में हुआ था। 2 दिसंबर 2018 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें डिब्रूगढ़ का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। 24 फरवरी 2019 को उनका पावन धर्माध्यक्ष अभिषेक हुआ और 15 फरवरी 2021 को वे डिब्रूगढ़ के धर्माध्यक्ष बने। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन में अपने मिशन के तीसरे दिन इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ मारिया जुप्पी कीव में यूक्रेनी राज्य दिवस समारोह में भाग लिए, जो कीवन रस के बपतिस्मा की याद में मनाया जाता है। आकाश की ओर देखते हुए जहां से रात में मिसाइलों ने फिर से नागरिकों की इमारतों पर हमला किया, कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने कीव से यूक्रेनी भाषा में यूक्रेन के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद एवं सुरक्षा की याचना की। एक न्यायपूर्ण शांति प्रदान कर, कैदी घर लौटें, बच्चे एक बार फिर अपने परिवारों को गले लगाएं, लापता लोग मिल जाएं और हर कोई अपने मृत प्रियजनों के शव पर शोक मना सके। हम प्रत्येक में शांति निर्माता बनने का साहस एवं प्रज्ञा जगाइए। 15 जुलाई इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ मारिया जुप्पी के यूक्रेन मिशन का तीसरा दिन था। वे 13 जुलाई की शाम को यूक्रेन पहुंचे और लाविव इलाके से यात्रा करके वे 14 जुलाई को किए पहुंचे। उनकी यात्रा का मुख्य मकसद पोप लियो चौदहवें का सामीप्य प्रकट करना है और 2023 में उनके पहले मिशन के दौरान बनाए गए संपर्क एवं संचार के तरीकों को मजबूत करना है, जो पोप फ्रांसिस ने उन्हें परमधम पीठ की मानवीय कोशिशों के समर्थन में सौंपा था। ये कोशिशें युद्धबंदियों की अदला बदली को आसान बनाना, उन बच्चों की वापसी पक्की करना जिनके बारे में यूक्रेन का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती रूस ले जाया गया है, और लड़ाई में मारे गए लोगों की लाशें वापस लाने पर ध्यान देना है। दोपहर में कार्डिनल जुप्पी इन इलाकों में काम करने वाले संघ और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल प्रतिनिधियों से भी मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी कोई आधिकारिक मुलाकात तय नहीं है। दोनों की मुलाकात 3 साल पहले कार्डिनल के मिशन के दौरान हुई थी। प्रेरितिक राजदूत आवास में क्रिस त्याग के बाद, जिसे महाधर्माध्यक्ष विश्वलदास कुलबोकास ने अर्पित किया, कार्डिनल जुप्पी ने कीवान रस के बपतिस्मा उत्सव में हिस्सा लिया। हर साल 15 जुलाई को मनाया जाने वाला यह वर्षगांठ 988 में राजकुमार वोलोदिमिर द ग्रेट द्वारा देश को ईसाई बनाने की याद में मनाया जाता है। उन्हें कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों ही कलीसियाओं द्वारा संत माना जाता है और जिनकी विरासत पूर्वी यूरोप की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ी है। इस दिन को नागरिक और धार्मिक दोनों तरह से मनाया जाता है। इससे आधिकारिक रूप से यूक्रेनी राज्य दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 2021 में एक आज्ञाप्ति पर हस्ताक्षर करके इसे राष्ट्रीय कैलेंडर में जोड़ा था। कीव में इस समारोह में शामिल होने वालों में अलग अलग धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधि, यूक्रेनी ग्रीक कार्तिक कलीसिया के मेजर बिशप स्वेतोस्लाव शेवचुक और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन शामिल थीं, जो युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की अपनी 11वीं यात्रा पर थीं। कार्डिनल जुप्पी ने सुनहरे गुंबददार मठ के सामने संत माइकल प्रांगण में हुए समारोह में हिस्सा लिया। इटालियन दैनिक समाचार अवेनीरे के अनुसार, यह रूस के बड़े पैमाने पर हमले के शुरुआती दिनों से ही युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बना हुआ है।
स्मारक दीवार के पास मार्ग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की और दूसरे लोगों के साथ जुलूस में चलते हुए, जहां युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, कार्डिनल लाल गुलाब का एक गुलदस्ता लिए हुए थे, जिसे उन्होंने बाद में युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवाने वालों की याद में रखा। यूक्रेनी भाषा में लिखे एक दस्तावेज को पढ़ते हुए बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष ने देश के लिए न्यायपूर्ण शांति की प्रार्थना की, जिसे पोप फ्रांसिस ने बार बार शहीद बताया था। उन्होंने इसे ईश्वर एवं संत वोलोदिमिर की मध्यस्थता को समर्पित किया। यह देखते हुए कि संत का नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों के नाम पर है, उन्होंने प्रार्थना की, संत वोलोदिमिर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मन एवं दिल को रोशन करें और न्याय एवं शांति के रास्ते खोलें। नोबेल पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक, धार्मिक नेता और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु हथियार के युग में निरस्त्र एवं बिना हथियार वाली शांति के लिए रोम घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए रोम के कंपिदोलियो में एकत्रित हुए। परमाणु हथियार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न हुई बड़ी चुनौतियों के सामने यह संयुक्त अपील नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है। गुरुवार 16 जुलाई को रोम के कंपिदोलियो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु और स्वायत्त हथियार, नए डिजिटल नवाचार और डिजिटल विकास के उभरते मॉडल के युग में निरस्त्र एवं बिना हथियार वाले शांति के लिए रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, और इसी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं परमाणु युद्ध पर विश्व नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सभा समाप्त हुई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव की सुरक्षा के लिए समर्पित है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में बढ़ोतरी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इन तनावों को कम करने के हर संभव उपाय और सभी राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गुरुवार रात में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और तनाव तुरंत कम करने की अपील दोहराई। उन्होंने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने कहा, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर कहीं भी हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने तनाव तत्काल कम करने के लिए सभी संभव उपाय और राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। गुरुवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि हाल के हमलों से आम नागरिकों को विनाशकारी नुकसान हुआ है। अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो कह रही हैं, इन हमलों में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। बड़ी नागरिक आबादी वाले शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया और रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया गया या भारी नुकसान पहुंचाया गया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए हैं। हम इन हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकालो के शब्द।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य एक अहम वाणिज्यिक नौवहन मार्ग है, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र में हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने तनाव कम करने और कूटनैतिक समाधान तलाशने की अपील की। यूएन महासचिव ने अमेरिका और ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद ने होर्मुज जल डमरू मध्य में नागरिक जहाजों पर हाल में हुए हमलों की निंदा की। यूएन महासचिव ने चेतावनी दी कि पूर्ण स्तर पर हिंसक टकराव शुरू होने से क्षेत्र के लोगों और उससे बाहर भी विनाशकारी परिणाम होंगे। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़े हिंसक टकराव के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। सैकड़ों जहाजों पर करीब 6,000 नाविक फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने ईरान की धमकियों और खाड़ी देशों के विरुद्ध कथित हमलों की निंदा की है। IMO महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि सुरक्षित हालात बहाल होने तक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही से बचना चाहिए। IMO के अनुसार अब तक 136 जहाजों और 2,900 नाविकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है।
2: 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पूरा करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अरबों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन रिपोर्ट ने आगाह किया है कि इन लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकारों को अब अपनी कोशिशें कहीं अधिक तेज करनी होंगी। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को शांति के लिए साझा रूपरेखा कहा गया है। इस वर्ष सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF का ध्यान परिवर्तनकारी, समतापूर्ण, नवाचारी और समन्वित कार्यवाही पर केंद्रित था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। ये मंच 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति, चुनौतियों और आगे की कार्रवाई की समीक्षा करेगा। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से लगभग 1 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल मिला है, बिजली की पहुंच दुनिया की 92% आबादी तक पहुंची है और इंटरनेट की पहुंच 40% से बढ़कर 74% हो गई है। लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अधिकतर लक्ष्य अब भी पटरी पर नहीं है। केवल 36% लक्ष्य सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि गरीबी, खाद्य असुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस वर्ष HLPF में स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, शहरों और वैश्विक साझेदारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के युग में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार 7 जुलाई को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों, नागरिक समाज समूहों, शिक्षकों और बाल कल्याण विशेषज्ञों को एक साथ ला रहा है। गठबंधन का मानना है कि AI बच्चों के सीखने, खेलने और बड़े होने के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए उनके अधिकारों को बाद के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के दौर में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। अब तक 17 देश इससे जुड़ चुके हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
4: We do not let medicine reach a child until it is proven safe.
3: हम किसी दवा को तब तक बच्चे तक नहीं पहुंचने देते जब तक वे सुरक्षित साबित ना हो जाए। हम हर खिलौने की जांच करते हैं, मगर AI हमारे बच्चों की पढ़ाई, दोस्तियों और सबसे निजी सवालों तक पहुंच गया है, इससे पहले कि किसी ने पूछा हो कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा।
4: Before anyone asked what it would do to them.
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। गठबंधन का कहना है कि AI बच्चों की पढ़ाई, खेल और आपसी संपर्क के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए AI प्रणालियां बनाते समय बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और उनकी राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: जलवायु निगरानी सेवा द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के जलवायु सूचना प्रमुख जॉन केनेडी ने कहा कि 1976 की ऐतिहासिक ताप लहर के बाद से पिछले 50 वर्षों में यूरोप का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ चुका है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महाद्वीप है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नई जलवायु रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर ये दूसरा सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया गया। WMO ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ताप लहरें अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं। अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम से सूखे व जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ गया है। WHO के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूरोप में गर्मी से जुड़ी 2 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने देशों से पूर्व चेतावनी प्रणालियां मजबूत करने और गर्मी से निपटने की कार्य योजनाएं लागू करने का आग्रह किया है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कार्डिनल जुप्पी यूक्रेन के 4 दिवस के दौरे के बाद 16 जुलाई को रोम लौटे। यूक्रेन के राज्य दिवस उत्सव मनाने के बाद इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत युद्ध के कैदियों, यूक्रेन के बच्चों की वापसी, मानवीय मदद एवं कैदियों के परिवारों की ओर से कार्डिनल से रूस की जेलों का दौरा करने के आग्रह पर केंद्रित थी। उन्होंने 2023 में यूक्रेन में अपना पहला मिशन पूरा किया था। लाविव क्षेत्र एवं कीव के बीच इन 4 दिनों में उन्होंने पोप लियो 14वें का सामीप्य एवं उनकी प्रार्थनाओं का संदेश दिया, जिन्होंने बार बार शांति एवं मानव सम्मान की रक्षा की अपील की। कार्डिनल का अंतिम कार्यक्रम मंगलवार दोपहर को संत माइकल प्रांगण में यूक्रेनी राज्य दिवस समारोह में भाग लेना था, जिसमें राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और दूसरे सिविल एवं धार्मिक अधिकारी शामिल हुए। बातचीत के दौरान मंत्री सिबिहा ने मानवीय मदद के लिए परमधम पीठ को धन्यवाद दिया और चल रहे शांति प्रयासों और मानवीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों की स्थिति पर प्रकाश डाला, उनकी रिहाई को आसान बनाने के लिए एक मानवीय प्रणाली की मांग की और रूस के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में अलेश्की एवं होला प्रिस्टन के समुदाय तक मानवीय पहुंच की आवश्यकता का जिक्र किया। मंत्री ने की 25 ग्लाउरा पर हाल ही में हुए हमले का भी मुद्दा उठाया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी अगस्त में 975वीं सालगिरह मनाई जाएगी, और इसकी सुरक्षा एवं मरम्मत को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्डिनल जुप्पी के अन्य यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कैदियों की वापसी, यूक्रेनी बच्चों की वापसी, मानवीय सहायता एवं नागरिकों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। कार्डिनल ने दोहराया कि वैटिकन की कोशिशों के केंद्र में मानवीय कार्य रहेगा। उन्होंने कहा, एक सैनिक, एक आम आदमी या एक बच्चे का अपने परिवार से मिलना भी शांति की तरफ एक कदम है। हर संभव कोशिश जारी रहेगी, यह लियो 14वें की इच्छा है। मानवीय प्रतिबद्धता को राजनीतिक या सैन्य बातों से ऊपर होना चाहिए। कार्डिनल और यूक्रेन में पोप के प्रतिनिधि महाधर्माध्यक्ष विश्वलदास कुलबोकस के समक्ष रखी कई मांगों में से एक यह थी कि सभी के बदले सभी कैदी विनिमय का समर्थन किया जाए, जिसके तहत रूस में बंद लगभग 7,000 यूक्रेनी कैदियों और यूक्रेन में बंद लगभग 4,000 रूसी कैदियों की पूरी तरह से अदला बदली की जाए। मुलाकातों में लापता लोगों के मामलों, आम लोगों को वापस लाने और सीमा पार ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर भी बात हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वैटिकन कई सालों से काम कर रहा है। महारानी कमिला से मुलाकात के बाद सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुनिया भर की कार्तिक धर्म बहनें मानव तस्करी के खिलाफ काम करके संघर्ष वाले क्षेत्रों में और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में कमजोर महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करना जारी रखी हुई हैं। राजा चार्ल्स तृतीय एवं रानी कमिला के वैटिकन दौरे के दौरान उनसे अपनी पहली मुलाकात के 1 साल से भी कम समय में ही सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ UISG के प्रतिनिधि लंदन गए और क्लारेंस हाउस में महारानी से फिर से मुलाकात की। उन्होंने उनसे दुनिया के कुछ सबसे कमजोर समुदायों के बीच अपने मिशन के अग्रिम मोर्चे की कहानियाँ साझा की। बुधवार को हुई मुलाकात ने हर महाद्वीप में सेवा कर रही कैथोलिक धर्म बहनों के काम पर चिंतन करने का मौका दिया, खासकर संघर्ष, मानव तस्करी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण पर। इसने UISG एवं वैटिकन में ब्रिटिश राजदूतावास के बीच मानव गरिमा और हिम्मत को बढ़ावा देने वाली कोशिशों का समर्थन करने में चल रहे सहयोग पर भी जोर दिया। वैटिकन के ब्रिटिश राजदूतावास में अंतरिम चार्ज द अफेयर्स डॉक्टर इनेबल इंगे ने इस मुलाकात को एक बहुत ही खास खुशी का पल बताया और कहा कि यह निमंत्रण रानी कमिला की महिला धर्म संघियों के कामों के प्रति उनकी गहरी सराहना को दिखाता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी उम्मीद की थी कि धर्म बहनों को इतनी जल्दी क्लारेंस हाउस बुलाया जाएगा। यह सचमुच धर्म बहनों के कामों के लिए महारानी की गहरी तारीफ को दिखाता है।
ईरान के प्रमुख सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान के विद्युत उत्पादन केंद्रों और पुलों पर हमला करता है तो उसके जवाब में ईरान पूरे पश्चिम एशिया में स्थित सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर विनाशकारी हमला करेगा। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक तेहरान बातचीत के लिए सहमत नहीं होता अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर अपने हमले बढ़ा सकता है। इससे पहले ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए थे, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के अंदर विभिन्न ठिकानों पर रात भर हमले जारी रखे। तेहरान ने कहा कि उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में ठिकानों को निशाना बनाया क्योंकि शत्रुता के लगातार छठे दिन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक समझौते में तनाव आ गया। अमेरिकी सैनिक ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में बेगुनाह नाविकों को धमकाने की ईरान की ताकत को कम करने के लिए कई जगहों पर 6 घंटे तक हमले किए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की। गुटेरेस ने इस बात पर फिर जोर दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन के सभी अधिकारों को पूरी तरह से बहाल किया जाए जो दुनिया भर में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी नाविकों की सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता या समुद्री आवागमन की आज़ादी बनाए रखने के लिए संयम बरतने की अपील की है। यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक झटके के कारण इस वर्ष के अंत तक 2.3 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बच्चे आर्थिक गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं। इससे गरीबी कम करने में वर्षों की प्रगति उलट सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में बढ़ोतरी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इन तनावों को कम करने के हर संभव उपाय और सभी राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गुरुवार रात में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और तनाव तुरंत कम करने की अपील दोहराई। उन्होंने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने कहा, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर कहीं भी हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने तनाव तत्काल कम करने के लिए सभी संभव उपाय और राजनयिक माध्यम अपनाने का आग्रह किया है। गुरुवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि हाल के हमलों से आम नागरिकों को विनाशकारी नुकसान हुआ है। अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो कह रही हैं, इन हमलों में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। बड़ी नागरिक आबादी वाले शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया और रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया गया या भारी नुकसान पहुंचाया गया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए हैं। हम इन हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजनीतिक एवं शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकालो के शब्द।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य एक अहम वाणिज्यिक नौवहन मार्ग है, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र में हमलों में तेजी के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने तनाव कम करने और कूटनैतिक समाधान तलाशने की अपील की। यूएन महासचिव ने अमेरिका और ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय

0: नाविक फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने ईरान की धमकियों और खाड़ी देशों के विरुद्ध कथित हमलों की निंदा की है। IMO महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि सुरक्षित हालात बहाल होने तक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही से बचना चाहिए। IMO के अनुसार अब तक 136 जहाजों और 2900 नाविकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है।
1: 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पूरा करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अरबों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन रिपोर्ट ने आगाह किया है कि इन लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकारों को अब अपनी कोशिशें कहीं अधिक तेज करनी होंगी। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को शांति के लिए साझा रूपरेखा कहा गया है। इस वर्ष सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच HLPF का ध्यान परिवर्तनकारी, समतापूर्ण, नवाचारी और समन्वित कार्यवाही पर केंद्रित था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। ये मंच 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति, चुनौतियों और आगे की कार्रवाई की समीक्षा करेगा। 2026 की SDG प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से लगभग 1 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल मिला है, बिजली की पहुंच दुनिया की 92% आबादी तक पहुंची है और इंटरनेट की पहुंच 40% से बढ़कर 74% हो गई है। लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अधिकतर लक्ष्य अब भी पटरी पर नहीं है। केवल 36% लक्ष्य सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि गरीबी, खाद्य असुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस वर्ष HLPF में स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, शहरों और वैश्विक साझेदारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के युग में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार 7 जुलाई को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों, नागरिक समाज समूहों, शिक्षकों और बाल कल्याण विशेषज्ञों को एक साथ ला रहा है। गठबंधन का मानना है कि AI बच्चों के सीखने, खेलने और बड़े होने के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए उनके अधिकारों को बाद के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के दौर में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मंगलवार को जिनेवा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया गया। अब तक 17 देश इससे जुड़ चुके हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
2: We do not let medicine reach a child until it is proven safe.
0: हम किसी दवा को तब तक बच्चे तक नहीं पहुंचने देते जब तक वे सुरक्षित साबित ना हो जाए। हम हर खिलौने की जांच करते हैं, मगर AI हमारे बच्चों की पढ़ाई, दोस्तियों और सबसे निजी सवालों तक पहुंच गया है, इससे पहले कि किसी ने पूछा हो कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा।
2: Before anyone asked what it would do to them.
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। गठबंधन का कहना है कि AI बच्चों की पढ़ाई, खेल और आपसी संपर्क के तरीकों को तेजी से बदल रहा है, इसलिए AI प्रणालियां बनाते समय बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और उनकी राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: जलवायु निगरानी सेवा द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के जलवायु सूचना प्रमुख जॉन केनेडी ने कहा कि 1976 की ऐतिहासिक ताप लहर के बाद से पिछले 50 वर्षों में यूरोप का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ चुका है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महाद्वीप है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: नई जलवायु रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में जून अब तक का सबसे गर्म महीना रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर ये दूसरा सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया गया। WMO ने कहा है

0: कि जलवायु परिवर्तन के कारण ताप लहरें अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं। अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम से सूखे व जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ गया है। WHO के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूरोप में गर्मी से जुड़ी 2 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने देशों से पूर्व चेतावनी प्रणालियां मजबूत करने और गर्मी से निपटने की कार्य योजनाएं लागू करने का आग्रह किया है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कार्डिनल जुप्पी यूक्रेन के 4 दिवस के दौरे के बाद 16 जुलाई को रोम लौटे। यूक्रेन के राज्य दिवस उत्सव मनाने के बाद इतालवी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत युद्ध के कैदियों, यूक्रेन के बच्चों की वापसी, मानवीय मदद एवं कैदियों के परिवारों की ओर से कार्डिनल से रूस की जेलों का दौरा करने के आग्रह पर केंद्रित थी। उन्होंने 2023 में यूक्रेन में अपना पहला मिशन पूरा किया था। लाविव क्षेत्र एवं कीव के बीच इन 4 दिनों में उन्होंने पोप लियो 14वें का सामीप्य एवं उनकी प्रार्थनाओं का संदेश दिया, जिन्होंने बार बार शांति एवं मानव सम्मान की रक्षा की अपील की। कार्डिनल का अंतिम कार्यक्रम मंगलवार दोपहर को संत माइकल प्रांगण में यूक्रेनी राज्य दिवस समारोह में भाग लेना था, जिसमें राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और दूसरे सिविल एवं धार्मिक अधिकारी शामिल हुए। बातचीत के दौरान मंत्री सिबिहा ने मानवीय मदद के लिए परमधम पीठ को धन्यवाद दिया और चल रहे शांति प्रयासों और मानवीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों की स्थिति पर प्रकाश डाला, उनकी रिहाई को आसान बनाने के लिए एक मानवीय प्रणाली की मांग की और रूस के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में अलेश्की एवं होला प्रिस्टन के समुदाय तक मानवीय पहुंच की आवश्यकता का जिक्र किया। मंत्री ने की 25 ग्लाउरा पर हाल ही में हुए हमले का भी मुद्दा उठाया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी अगस्त में 975वीं सालगिरह मनाई जाएगी और इसकी सुरक्षा एवं मरम्मत को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्डिनल जुप्पी के अन्य यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कैदियों की वापसी, यूक्रेनी बच्चों की वापसी, मानवीय सहायता एवं नागरिकों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। कार्डिनल ने दोहराया कि वैटिकन की कोशिशों के केंद्र में मानवीय कार्य रहेगा। उन्होंने कहा, एक सैनिक, एक आम आदमी या एक बच्चे का अपने परिवार से मिलना भी शांति की तरफ एक कदम है। हर संभव कोशिश जारी रहेगी, यह लियो 14वें की इच्छा है। मानवीय प्रतिबद्धता को राजनीतिक या सैन्य बातों से ऊपर होना चाहिए। कार्डिनल और यूक्रेन में पोप के प्रतिनिधि महाधर्माध्यक्ष विश्वलदास कुलबोकस के समक्ष रखी कई मांगों में से एक यह थी कि सभी के बदले सभी कैदी विनिमय का समर्थन किया जाए, जिसके तहत रूस में बंद लगभग 7,000 यूक्रेनी कैदियों और यूक्रेन में बंद लगभग 4,000 रूसी कैदियों की पूरी तरह से अदला बदली की जाए। मुलाकातों में लापता लोगों के मामलों, आम लोगों को वापस लाने और सीमा पार ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर भी बात हुई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वैटिकन कई सालों से काम कर रहा है। महारानी कमिला से मुलाकात के बाद सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुनिया भर की कार्तिक धर्म बहनें मानव तस्करी के खिलाफ काम करके संघर्ष वाले क्षेत्रों में और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में कमजोर महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करना जारी रखी हुई हैं। राजा चार्ल्स तृतीय एवं रानी कमिला के वैटिकन दौरे के दौरान उनसे अपनी पहली मुलाकात के एक साल से भी कम समय में ही सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यूआईएसजी के प्रतिनिधि लंदन गए और क्लारेंस हाउस में महारानी से फिर से मुलाकात की। उन्होंने उनसे दुनिया के कुछ सबसे कमजोर समुदायों के बीच अपने मिशन के अग्रिम मोर्चे की कहानियाँ साझा की। बुधवार को हुई मुलाकात ने हर महाद्वीप में सेवा कर रही कैथोलिक धर्म बहनों के काम पर चिंतन करने का मौका दिया, खासकर संघर्ष, मानव तस्करी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण पर। इसने यूआईएससी एवं वैटिकन में ब्रिटिश राजदूतावास के बीच मानव गरिमा और हिम्मत को बढ़ावा देने वाली कोशिशों का समर्थन करने में चल रहे सहयोग पर भी जोर दिया। वैटिकन के ब्रिटिश राजदूतावास में अंतरिम चार्ज द अफेयर्स डॉक्टर एनेबल इंगे ने इस मुलाकात को एक बहुत ही खास खुशी का पल बताया और कहा कि यह निमंत्रण रानी कमिला की महिला धर्म संघियों के कामों के प्रति उनकी गहरी सराहना को दिखाता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी उम्मीद की थी कि धर्म बहनों को इतनी जल्दी क्लारेंस हाउस बुलाया जाएगा। यह सचमुच धर्म बहनों के कामों के लिए महारानी की गहरी तारीफ को दिखाता है।
ईरान की प्रमुख सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान के विद्युत उत्पादन केंद्रों और पुलों पर हमला करता है तो उसके जवाब में ईरान पूरे पश्चिम एशिया में स्थित सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर विनाशकारी हमला करेगा। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक तेहरान बातचीत के लिए सहमत नहीं होता अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर अपने हमले बढ़ा सकता है। इससे पहले ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए थे, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के अंदर विभिन्न ठिकानों पर रात भर हमले जारी रखे। तेहरान ने कहा कि उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में ठिकानों को निशाना बनाया क्योंकि शत्रुता के लगातार छठे दिन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक समझौते में तनाव आ गया। अमेरिकी सैनिक ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में बेगुनाह नाविकों को धमकाने की ईरान की ताकत को कम करने के लिए कई जगहों पर 6 घंटे तक हमले किए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की। गुटेरेस ने इस बात पर फिर जोर दिया कि होर्मुज जल डमरू मध्य में नौवहन के सभी अधिकारों को पूरी तरह से बहाल किया जाए जो दुनिया भर में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी नाविकों की सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता या समुद्री आवागमन की आज़ादी बनाए रखने के लिए संयम बरतने की अपील की है। यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक झटके के कारण इस वर्ष के अंत तक 2.3 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बच्चे आर्थिक गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं। इससे गरीबी कम करने में वर्षों की प्रगति उलट सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।